साधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः।

0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेज,
1: योर बॉडी इज लाइक अ कैमरा, योर हार्ट इज द फिल्म, योर माइंड इज द लेंस. If you turn the lens of your mind towards the faults of others, similar bad thoughts will be imprinted on the film of your heart. If you direct the lens of your mind towards good thoughts, your heart will have good impressions.